वन मोहिने इस्पाइल नाने बीलारा ऐसे त्रबिल तका इसना मुय बुएना स्टार्डे अ टोडोस लोस ओरिएंटेस दे एस्टे रेडियो एमिसोरा यो एस्टाबा हब्लांडो दे मि लेंगुआ मिस्किटो यो ते वोय अ दार अ एंटेंडेर En español, lo que yo hablaba en mi lengua miskito.